की शुरुआत आग से हुई, आग शक्ति है, आग जिंदगी है, तुम सब में एक चिंगारी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता, जो बुराई पास आएगी जल जाएगी, जो पाप करीब आएगा जल